एक न्यूज आई कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अयोध्या में जो घपला चल रहा था, तीन चार महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनुशंसा की कि जो काउंटिंग स्टाफ है उसको हटाया जाए, लेकिन उस सलाह को, उस अनुशंसा को नजरअंदाज किया गया, जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। कुछ ऐसी ताकतें हैं, वो दिल्ली में है या नागपुर में, ये बहुत जल्दी पता चलेगा, जो चोर को वहां बचा रही थी और शायद आगे भी बचा रही है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, जैसा मैंने आपको कहा, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युद्ध खत्म भी हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तेल का कम भी हो जाए, जो पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर का दाम बढ़ चुका है, सरकार उसको वापस नहीं लेगी। हम बार बार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि मिडिल क्लास पर, मध्यम वर्ग पर, निम्न वर्ग पर, सब पर जो बर्डन है, जो वजन है, जो बोझ डाला जा रहा है, आपकी गलत नीतियों का बोझ है, उसको आप वापस लीजिए।

0: कितने आदमी लाए हो?
1: सरदार, सरदार टीएमसी के 20 सांसद और 58 विधायक।
2: शाबाश।
0: और तुम?
1: सरदार, उद्धव के 9 में से पूरे 6 सांसद।
0: अरे आओ चंडा, तुम कितना आदमी लाए थे रे?
1: सरदार, हम आम आदमी पार्टी के 10 में से पूरे 7 सांसद लेकर आए थे। हाँ,
0: यहाँ से 50-50 कोस दूर जब कहीं चुनाव होता है तो विपक्ष बोलता है अपने आदमी छुपा लो वरना। ये 20, ये 6 और ये 7, समाजवादी के पास 37 सांसद है, पूरे 37। 37। आप कितना लाएंगे महाराज?

एक न्यूज आई कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अयोध्या में जो घपला चल रहा था, तीन चार महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनुशंसा की कि जो काउंटिंग स्टाफ है उसको हटाया जाए, लेकिन उस सलाह को, उस अनुशंसा को नजरअंदाज किया गया, जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। कुछ ऐसी ताकतें हैं, वो दिल्ली में है या नागपुर में, ये बहुत जल्दी पता चलेगा, जो चोर को वहां बचा रही थी और शायद आगे भी बचा रही है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, जैसा मैंने आपको कहा, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युद्ध खत्म भी हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तेल का कम भी हो जाए, जो पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर का दाम बढ़ चुका है, सरकार उसको वापस नहीं लेगी। हम बार बार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि मिडिल क्लास पर, मध्यम वर्ग पर, निम्न वर्ग पर, सब पर जो बर्डन है, जो वजन है, जो बोझ डाला जा रहा है, आपकी गलत नीतियों का बोझ है, उसको आप वापस लीजिए।

0: most of the children. But in this tragic incident, that one 11-year-old boy, Vihan Srivastav, could not be saved. Now, we have to see that what action will be taken by the authorities on those culprits who are responsible for this incident. With camera person Mandar, this is the Best Party for India Today, Mumbai.
1: मुझे बहुत दुख लग रहा है इस घटना को. बच्चे को भी मैंने जाके देखा जेन हॉस्पिटल में. बच्चे के माँ पिताजी को मैं जाके मिल के आई. कुल मिला के 13 स्टूडेंट वैन में थे. उसमें के जो 12 स्टूडेंट है अभी वो आउट ऑफ डेंजरस है. एक जो बच्चा है वो एक्सपायर हुआ है. बच्चे को मैं देख के आई, माँ पिताजी को मिल के आई मैं. लेकिन बहुत बुरा लग रहा है ये सब देखते हुए. एक बात मुझे वहाँ पे पता चली कि स्थानिक लोगों ने उधर अगर कंप्लेंट दी थी अगर उस पेड़ के बारे में, तो भी पालिका प्रशासन ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया. तो ऑब्वियसली जो भी पालिका प्रशासन का उधर अधिकारी है, वार्ड ऑफिसर है, उसके ऊपर जवाबदारी निश्चित की जाएगी.
2: इस वक्त हम मुंबई के चेंबूर इलाके में, जहां पर ये पेड़ जो है वो अचानक कल एक स्कूल बस पे गिर गया था जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई. इस वक्त हमारे साथ कुछ इलाके के लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं. ये पेड़ अच्छा खासा था पहले?
3: अच्छा था, लेकिन अभी आधा ना सूख गया था. ये
2: सूख गया था
3: नीचे से, ये देखो ना आधा से बाद खराब हो गया है, पूरा बाद हो गया है. नहीं ऐसा बड़ा था, लेकिन पोखल हो गया था आधा. ऐसा लग रहा था गिरेगा कभी भी ये.
2: लग रहा है तो कुछ कंप्लेंट हुआ?
3: दिया था, सोसाइटी वाले ने दिया था कंप्लेंट, बोल रहे थे.
2: कि आप लोगों ने नहीं दिया था?
3: हम लोग तो काम करते इधर.
2: लेकिन ये ऐसा सूखा हुआ लग रहा था?
3: लग रहा था.
2: आप लोगों ने देखा था ये पेड़ को?
4: हम दर दिन आते ना इधर से.
5: दो मिनट में इतने रुका है, लड़की आ गए थे. मैं जाने होते ऐसा पड़ गया था इतना कल.
2: आप थे यहाँ पर उस?
5: हाँ, इधर रुका था मैं. हाँ. लड़के आए थे ऊपर. हाँ. पोरगी से बात के लिए मैं. हाँ. पूरा तिथा गेली गाड़ी पर इकड़े बस वरती ये जाली.
6: चल, बस चल रहा था.
2: बस
3: चल रहा था और पेड़ गिर गया.
7: More news coming in. 117 people, mostly politicians from India and Pakistan, have written to Prime Minister Modi and Pakistani Premier Shehbaz Sharif, urging them to normalize ties. 61 from India, 56 from Pakistan. Indian signatories include Farooq Abdullah, Mehbooba Mufti, Manishankar Iyer, and former RANW Chief A.S. Talat. Pro-Pakistan voices seek talks with Pakistan. 117 Indians and Pakistans are backing normal ties. Pakistan backs terror, but they bat for peace here. Farooq Abdullah, Mehbooba Mufti, RJD's Manoj Jha are the signatories. Ex-Mamata aide Umayan Kabir among those who signed this letter. Letter seeks diplomatic talks with Pakistan. Letter seeks end to hostilities with Pakistan. We have information of 117 people who've written to Prime Minister Narendra Modi asking to normalize ties with Pakistan, work on improving diplomatic ties. Well, this list has Manishankar Iyer, leader of the Congress Party, among others, Mehbooba Mufti and Dr. Farooq Abdullah, also RJD's Manoj Jha and Humayun Kabir, who is a former aide of Mamata Bandyopadhyay. In fact, we have details of 56 of these people being from Pakistan and the rest 61 from India. Indian signatories include Farooq Abdullah, Mehbooba Mufti, Manishankar Iyer and former RANW Chief A.S. Talat. Remember, there have been growing concerns about the fact that India has, remember, suspended the Indus Water Treaty, which is leading to water scarcity in Pakistan. Several statements have also been made and indications that the people of Pakistan are suffering. Relationship between both countries have nosedived after the horrific Pahalgam terror attack in the month of April last year. India suspended the Indus Water Treaty, and even before that, relations between both the countries have nosedived. We must improve ties with Pakistan is the kind of request that has been made by some people from Pakistan as well as voices from India. Gaurav, getting in more details on that story and putting that into perspective. Gaurav, history is witness to the fact that each time India has tried to, you know, improve ties with Pakistan, we've only been backstabbed. Yet we have these voices from India and Pakistan seeking talks and diplomatic ties with Pakistan.
8: You know, Sneha, you're absolutely

0: And news is coming. The dentist, remember, who mocked Ketan's death has now been axed. The dentist's body has suspended. Muskan Soni, Dr. Muskan Soni has been axed for mockery, justifying the murder of young Ketan Agarwal, and very insensitive comments were made by Muskan in a video that was put out by the dentist. But now she's facing the music here. She's been suspended for 5 years. Ketan was bald and he lied. That's what she'd said. Dr. Muskan Soni said, "You will die if you lie." There was a fair amount of uproar over on social media over the Instagram post that was put out by this woman on your screens. All India Dental Students and Surgeons Association immediately suspended the dentist in question, Dr. Muskan Soni, for 5 years. The female doctor posted in Madhya Pradesh's Katni district says facing serious consequences for justifying the high-profile murder of Ketan Agarwal in a social media post. Listening to what she had said.
1: So, guys, क्या देख रही हूँ मैं कि पुणे का जो लौंडा था उसके बाल ही नहीं थे तो अब ऐसे झूठ बोलोगे तो मरोगे ही ना. सो हैशटैग आई हेट मैन. दो आदमी क्या मर रहे मर्द समाज में डर फैला. सो गाइस क्या देख रही हूँ मैं कि पुणे का जो लौंडा.
0: I'm going to go straight across to Ravish for more on that story. Ravish, जब ये पोस्ट डॉक्टर मुस्कान ने डाला था उसके बाद बहुत कंडेमनेशन था कि इस तरीके की बातें की जा रही है ऐसे किसी विक्टिम के लिए, केतन अग्रवाल के लिए. और इसलिए ये जो डेंटिस्ट एसोसिएशन ये एक्शन लेना चाह रहे हैं. एक बड़ा एम्बैरेसमेंट भी हुआ है क्योंकि प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है डॉक्टर मुस्कान सोनी. जब ये एक्शन लिया गया है इसके बाद क्या वो प्रैक्टिस कर सकती है, क्या डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ?
2: देखिए मुस्कान सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी जो प्रैक्टिस कर रही हो, वो इस एसोसिएशन की ट्रेजरर थी मध्य प्रदेश में. और बताया जा रहा है कि लंबा एक्सपीरियंस था लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से एक ऐसी घटना जिस पर पूरे देश में गुस्सा था वहां पर उन इमोशंस के खिलाफ जाकर के उसने एक मॉक किया था एक डेथ को केतन की. और उसके बाद वाइड स्प्रेड एक आउटरेज था इसको लेकर के पूरे कंट्री में. और सोशल मीडिया पे जब ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ तो एसोसिएशन ने नोटिस भेजा था मुस्कान को. जो इन्फॉर्मेशन इंडिया टुडे ने एक्सेस किया उसके मुताबिक नोटिस भेजा गया था. उससे पूछा गया था कि इस बिहेवियर के लिए आप क्या एक्सक्यूज देना चाहेंगे, क्यों आपने ये सब किया है. तो उसने एक अपोलॉजी वीडियो भी बनाया था और एसोसिएशन को भेजा था. बताया जा रहा है कि एसोसिएशन को उसने नोटिस का जवाब दिया था लेकिन जो रिप्लाई दिया था मुस्कान ने उससे एसोसिएशन सेटिस्फाई नहीं था. और इसीलिए कल एसोसिएशन ने यह नया नोटिस जारी किया है कि 5 साल का बैन रहेगा. वो ना प्रैक्टिस कर पाएंगी ना ही एसोसिएशन की किसी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट कर पाएंगी. इनफैक्ट जो इलेक्शंस होते हैं एनुअल इलेक्शंस जो होते हैं एसोसिएशन के उसमें भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी. और सबसे बड़ी बात यह है कि वही मुस्कान जो कि कुछ दिन पहले केतन की डेथ को मॉक कर रही थी अब वो मुस्कान अपने घर पर ताला लगा के गायब हो गई है. मुस्कान का फोन स्विच ऑफ हो गया है. इंडिया टुडे उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसका कोई पता फिलहाल चल नहीं पाया है. बताया जा रहा है कि बीते 2 दिनों से उसने फोन नंबर भी बंद कर दिया है अपना और जिस घर पर वो रहती थी वहां से भी वो फिलहाल पिछले 2 दिनों से गायब है. तो अब उसे ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है. उसे हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह थी जो उसने एक ऐसी डेथ को मॉक किया जिसको लेकर के पूरे देश में गुस्सा मचा हुआ था.
0: बने रहिए हमारे साथ रवीश, गेटिंग इन दोज डिटेल्स एट दिस पॉइंट इन टाइम. In fact, we will put out that video once again. That was Dr. Muskan Soni. She put out a very insensitive sort of a post, clearly to just get some views, but that has really gone against her. Not illegal, but very, very insensitive. We've had action against her as well. First, listen to the post.
1: I hate men. So, guys, क्या देख रही हूँ मैं कि पुणे का जो लौंडा था उसके बाल ही नहीं थे तो अब ऐसे झूठ बोलोगे तो मरोगे ही ना. सो हैशटैग आई हेट मैन. दो आदमी क्या मर रहे मर्द समाज में डर फैला.
0: Sort of a comment that she had made in her position in general as a human being as well, even if she wasn't a doctor, absolutely appalling there. But what looks really behind the reason that Ketan lost his life? Cops are probing if Ketan's hair patch was a trigger for the horrific murder. Cops are verifying if appearance led to a fallout there. The family had informed Sia about the patch, about this wig that he was wearing. Sia was told about the wig even before the engagement. Ketan's father has said that hair patch was never really concealed. It's not like Sia didn't know her. She was cheated. Hair patch alone could not be the murder motive, is what cops are indicating at this point in time. Listen in once again to what Dr. Muskan Soni had said.
1: So guys, क्या देख रही हूँ मैं कि पुणे का जो लौंडा था उसके बाल ही नहीं थे. तो अब ऐसे झूठ बोलोगे तो मरोगे ही ना. So hashtag I hate men. दो आदमी क्या मर रहे हैं. मर्द समाज में डर फैला.
0: The probe in the Pune murder case has intensified. Chetan was taken to Lohagarh Fort, the place where he and Sia killed Ketan. The police took him to the crime spot to recreate the scene. This comes days after Sia was taken to the fort for the same exercise. The police used a mannequin to represent Ketan during the crime scene reconstruction. Meanwhile, the investigation has revealed Sia and Ketan were considered a perfect match. According to the probe, Sia and Ketan's horoscopes are match in January and 27 of their 36 traits match, indicating an ideal alliance. It's also come to light that Ketan had repeatedly expressed concerns to his family about his fiancée Sia Goyal's closeness to co-accused Chetan Chaudhary. Investigators say Ketan had even asked his family whether her background had been verified or not, raising suspicions about her behavior in the days leading up to the crime. Meanwhile, the murder spot at Lohagarh Fort has drawn large crowds of curious visitors and is now being informally referred to as Sia's Point. The Lonavala Rural Police have closed the fort to visitors as the murder investigations continue.
3: चेतन को ऊपर रिक्रिएशन ऑफ सीन के लिए लेके गया था. उसने सभी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताए हैं क्या क्या हुआ था उसके. उसकी अभी तपास आगे इन्वेस्टिगेशन इज ओवर. अभी तपास कर रहे हैं.
4: लेकिन ऊपर जो पुतला लेके गए थे वो कितने किलो का था और किस प्रकार से रिक्रिएशन किया गया है.
3: चेतन के बॉडी के हिसाब से था. उस वेट के हिसाब से हमने पुतला रखा था. बाकी उसने सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताए हैं कि क्या क्या हुआ है. उस हिसाब से हमने मेमोरेंडम वगैरह किया.
4: कितना घंटे तक रिक्रिएशन चला
5: भाई. आए ना
6: शुरू में जब शादी का फाइनल हुआ था, जब एंगेजमेंट हो रही थी, तो क्या आपको इस सब बात का अंदाजा था?
7: सर, ये मैंने पुलिस स्टेटमेंट में पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में उनको मैंने बताया. आगे आपको कोर्ट हियरिंग में ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी. थैंक यू सर.
6: और बस एक दो बातें हैं. आप भी निकल रहे थे बाली के लिए?
7: हाँ जी.
6: तो ये हमने ड्राइवर से बात की तो ड्राइवर का कहना था कि आपकी बहन वापस आई थी और उसने कुछ पासपोर्ट वहाँ से निकाला एंड शी टोर दैट पासपोर्ट. तो क्या आपको याद है कि एग्जैक्टली किस तरीके से वो सीक्वेंस हुआ था?
7: हम लोग उतरे थे सर. उसके बाद मैं वॉशरूम गया था. वी वेंट टू स्टारबक्स. मैं ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा था. इट वॉज लेट एट नाइट. उसकी वजह से आई वॉज अ बिट स्लीपी तो मैंने स्टारबक्स में कॉफ़ी ऑर्डर की थी. आई नो ओनली अबाउट दैट मच सर.
6: तो ये बाली का प्लान आपका फाइनल था लेकिन?
7: हाँ जी.
6: वो पासपोर्ट की वजह से कैंसिल हो गया.
7: हाँ जी.
6: ओके. बस और एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ. अब ये सब कुछ होने के बाद क्या आपकी बहन के साथ बात हुई?
7: नहीं सर.
6: और आपने जो अभी स्टेटमेंट दिया है इस पूरे मामले में, वो एग्जैक्टली क्या उसमें आपका कहना है, थोड़ा ब्रीफ दीजिए.
7: व्हाट स्टेटमेंट सर?
6: स्टेटमेंट जो आपने रिकॉर्ड किया है उसमें एग्जैक्टली क्या आपने ब्रीफिंग दिया है?
7: वो मैंने पुलिस को बता दिया सर. आज वो पुलिस आपको कोर्ट ऑफ लॉ में बता देंगी सर. थैंक यू सो मच.
0: Just so unfortunate, but this is what the parents had found when they were fixing this alliance. At Sia and Ketan were perhaps, as per what the Kundli had proven, were the perfect match. The horoscope matched, and that's the reason why both the families would have been convinced. However, the horoscope was followed by homicide. Sia and Ketan's horoscope matched in the month of Jan. Well, their traits matched, 27 of them. Horoscopes indicated an ideal match. The family astrologer matched their horoscopes, is what the probe has revealed. And more news coming in. We're shifting focus to the national capital. Delhi government's pollution action plan is out. And here are the details. No fuel without the PUC in Delhi. This is something that has been said by the government. Higher parking fees, obviously, an attempt to dissuade people from using their cars and discouraging private vehicles. The ban on entry of older vehicles from outside of Delhi, that is something that is going to be enforced, hopefully. 50% staff attendance in government and private offices, so work from home is something that we would be seeing. Major restrictions on construction activities, which again is a big source of pollution in the city, in the national capital. No fuel without a pollution checked certificate in Delhi city. That is something that the government has spoken about. Sushant has got more details on that story. Sushant, Delhi Sarkar ki taraf se is samay kai sare aise measures liye jayenge jo ki pollution ko check karne ke liye hai, lekin clearly ye short term measures hai jo bataya ja raha hai sarkar ki taraf se. Aur kya keh rahi hai sarkar long term measures ke liye, aur ye bhi bataye ki ye kab se implement honge?
5: देखिए, इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जो है वो गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो है वो जिस तरीके से सर्दियां में पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता है और ऐसे में सरकार की परेशानी बढ़ती है कि उस वक्त सारी चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट करती है, तो उसको लेकर के पहले से सरकार ने अपना जो है वो तैयारियां शुरू कर दी है ताकि सर्दियों में जब अक्टूबर नवंबर का महीना होता है पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता है तो लोगों को परेशानी ना हो, उसको लेकर के अभी से ही सरकार ने सख्त निर्देश जो है वो जारी करने शुरू कर दिए हैं. दिल्ली में साफ तौर पर ये कह दिया गया कि अगर पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा, यानी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो आपको फ्यूल जो है वो नहीं मिलेगा. यानी आपको अपनी दिल्ली में अगर गाड़ी ड्राइव करनी है तो आपको पीयूसी सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है. इसके अलावा 50% जो कर्मचारी हैं वो घर से काम करेंगे. ये तमाम चीजें जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो की गई हैं. इसके अलावा अगर बात की जाए दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप, डीजल और सीएनजी पंपों पे पूरे एक साल उन्हीं वाहनों को इंधन मिलेगा जिनके पास वैध पॉल्यूशन जो है वो होगा. ANPR कैमरास और डिजिटल डेटाबेस के जरिए निगरानी रखी जाएगी कि जैसे ही गाड़ी पेट्रोल पंप पर आती है अगर उसके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली मशीन जो है बताएंगी, अपडेट करेंगी कि आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको फ्यूल जो है वो नहीं मिलेगा. इसके अलावा अगर बिना पॉल्यूशन के आप पीयूसी सर्टिफिकेट की आप गाड़ी चलाते तो उस पर जुर्माना भी लगेगा. इसके अलावा दिल्ली के बाहर के जो वाहन है उनकी एंट्री जो है वो बंद रहेगी 1 नवंबर से 31 जनवरी तक. BS4 से नीचे के जो वाहन है, BS6 से जो नीचे के वाहन है उनके प्रवेश पर रोक जो है वो सरकार लगाएगी. सिर्फ CNG, इलेक्ट्रिक और एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस के वाहनों को ही छूट जो है वो मिलेगी.
0: Ban on construction activities as well is what the government has clearly indicated as per Sushant. I'm going to thank you, Sushant, getting in those details on that big story that we are tracking. Well, that report and much more up on our website. It's indiatoday.in. You can download the app as well. On the other side of this break, trending stories and the big developments from the southern part of our country in our special So South edition.
8: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.

0: Missing JEE Advanced by just 2 marks would have shattered the dreams of many. But for Meerut's Sanket Kumar, it became the motivation to work even harder.
1: उस चैलेंज को दिमाग में रखते हुए मैंने फिर एक साल का ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया. ना ही मैंने किसी कॉलेज में अप्लाई किया, अप्लाई भी नहीं किया, एडमिशन तो दूर, मैंने अप्लाई भी नहीं करा था किसी कॉलेज में. एंड फिर मैंने खुद से ही इसी कमरे में बैठ के अपनी पूरी सेल्फ स्टडी वगैरह करी एंड यहीं पर मैं रहा हूँ. अपने जो प्रीवियस नोट्स थे 11, 12th के, वो मैंने वापस से रिवाइज करे. मैंने फ्रॉम स्क्रैच वापस से अपनी प्रिपरेशन शुरू करी.
0: His perseverance paid off. In 2022, Sanket cracked both JEE Main and JEE Advance and secured admission to the Indian Institute of Space Science and Technology, where he pursued aerospace engineering.
1: मेरे को IST में एडमिशन मिला, तो वहाँ पे जाके मुझे एयरक्राफ्ट से स्पेसक्राफ्ट तक का जो इनोवेशन है उस चीज के मैं इंट्रोड्यूस हुआ. एंड वहां पे जाके मैंने बहुत ज्यादा लाइक स्पेस कंजर्वेटिव भी पढ़ाई करी, तो उसने मेरे अंदर का इनोवेशन करा कि हाँ, नॉट एयरक्राफ्ट, नॉट समथिंग, बट समथिंग रिलेटेड टू स्पेस, समथिंग रिलेटेड टू रॉकेट्स. तो वहां से फिर मैं अपनी प्रिपरेशन मैंने वहां पे शुरू करी.
0: क्वालिफाइंग डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन हिज एकेडमिक परफॉर्मेंस, Sanket impressed the ISRO panel with his technical knowledge and has now been selected as a scientist engineer. He will be posted to ISRO's propulsion complex in Mahendragiri, where rocket systems undergo critical testing before launch. His family says his journey is proof that one setback does not define success. From missing JEE Advance by just 2 marks to earning a place at ISRO, Sanket Kumar's story is a reminder that perseverance can sometimes achieve what talent alone cannot. Bureau Report, India Today.

0: कितने आदमी लाए हो?
1: सरदार सरदार, टीएमसी के 20 सांसद और 58 विधायक।
0: शाबाश। और तुम?
1: सरदार, उद्धव के 9 में से पूरे 6 सांसद।
0: अरे आओ चंडा, तुम कितना आदमी लाए थे रे?
1: सरदार, हम आम आदमी पार्टी के 10 में से पूरे 7 सांसद लेकर आए थे। हाँ,
0: यहाँ से 50-50 कोस दूर जब कहीं चुनाव होता है तो विपक्ष बोलता है अपने आदमी छुपा लो वरना। ये 20, ये 6 और ये 7, समाजवादी के पास 37 सांसद है, पूरे 37। 37। आप कितना लाएंगे महाराज?
2: Co-powered by Sharda University, the world comes together at Sharda. Where are you? Souls and Symphony by Tanishq Natural Diamonds.
3: Hello and welcome. You're watching India Today. I'm Suesha Samant. We begin with the top headlines for track and field this hour. Inside an Axis in donation counting scam, accused reveal they exploited CCTV blind spots, confesses donation cash hidden in bathroom taken out. Year-old boy killed as tree crushed school bus. Vihan school bus crushed by tree. 4 students injured, all out of danger. Bus was carrying 13 students home from school. Big twist in the low.

कुछ लोगों के सीने पर कितना सांप लोट रहा होगा कि अरे एसआईआर के मुद्दे पर डीएमके और आम आदमी पार्टी ने भी साथ दे दिया। एसआईआर एक बड़ा सुनियोजित तरीका है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल तरीका है लोगों को डिसइनफ्रेंचाइज करने का। और अब जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि अगर आप क्रिटिकल रहे हैं सरकार के, अगर आपने सरकार से सवाल पूछा और आप जर्नलिस्ट भी हो, तो आपका राइट टू वोट ही छीन लिया जाएगा। और ऐसे कितने लाखों लोगों को डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया। ये जो राइट टू वोट है, ये हमें हमारा संविधान देता है। अगर आप 18 साल से आयु के ज्यादा हैं, साउंड माइंड के हैं और भारत के नागरिक हैं, तो आप देश में वोट कर सकते हैं। ये ठेकेदार बने घूम रहे हैं और ये लोगों को डिसइनफ्रेंचाइज करते जा रहे हैं। एज कस्टोडियंस ऑफ लॉ, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट्स टू इंटरवीन एंड एंश्योर कि ये राइट टू वोट ना वापस लिया जाए। आप लोगों की धूल आंख में झोंकने के लिए ये मीटिंग करिए, वो मीटिंग करिए, देश का क्या हाल है? विदेश नीति चौपट, उन्होंने खड़े होकर कहा सर मैं लाल लेजर वाली आंखों की रील बनाता हूं। मोदी जी का ज्यादा रील बन बनाओ, रील गुरु मैं हूं, मैं बनाऊंगा रील, विश्व गुरु मैं हूं। तो विदेश नीति चौपट है, धर्म और आस्था का जो प्रहार हो रहा है वो सब देख ही रहे। आप मीटिंग मीटिंग खेलते रहिए, देश देख रहा है क्या हो रहा है।

0: Mangal.
1: After a thunderous opening weekend, the Akshay Kumar starrer has officially stormed past the 100 crore mark at the worldwide box office. Directed by Ahmed Khan, the film has collected 8.50 crore net on its first Monday, taking its worldwide gross collection past the 100 crore milestone. The film also continued to perform well in international markets.
0: Our film army wali. और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या
1: Interestingly, its total overseas gross has climbed up to 19.95 crore, pushing the film's worldwide gross collection to an impressive 106.48 crore in just 4 days.
2: ये आजादगंज को आजाद कराने आए हैं
3: अपने घर
4: इसको कच रोल दे दिया कि तो हमें खा जाएगी
5: अरे वो पुरानी चावल है
6: मैं किस लिए फिल्म में
7: ग्लैमर
8: क्लाइमेक्स शूट कर ले क्या
9: कैसे करेंगे विलन चाहिए गुंडे चाहिए कहाँ से लाएंगे
10: इनको असलियत बतानी पड़ेगी
1: The box office journey began with 3.75 crore net from paid previews, followed by a solid 15.25 crore on its opening day. The momentum only gathered pace thereafter. Collections jumped to 20 crore on Saturday, while Sunday emerged as the film's biggest day, raking in an impressive 24.75 crore net.
11: ने बोला था तुम मेरे को वो देगा
12: क्या
11: अरे वो जो पिक्चर में हीरो को देता है
12: हीरोइन
13: अरे कैसी बात कर रहे हो ना ये पूरी फैमिली फिल्म है
11: नहीं रे ऐसा बोला ही नहीं मैं
14: वो क्या होता है जो कुएं के पास होता है ना
15: प्यासा
14: अरे प्यासा तो इधर है यार कुएं के ऊपर ऐसा रहता ना झुकके
15: घोड़ा
14: घोड़ा नहीं बे गधे
16: मैं बाल्टी मार के दूंगा तुम लोगों को
17: अरे यार जो तेरे हाथ में है वो यार
18: अन्ना बाल्टी अरे बाल्टी थी
14: कब से बाल्टी बोल रहा हूँ कोई समझ ही नहीं रहा
1: डायरेक्टेड बाय अहमद खान वेलकम टू द जंगल इज द थर्ड इंस्टॉलमेंट इन द पॉपुलर वेलकम फ्रेंचाइज
19: लोगों की माँ बहन होती है आपकी बाप बहन हो गई है अब अच्छे खानदान का शरीफ लड़का कहाँ से मिलेगा
20: अपन पे जो हाथ डालता है अपन उसकी फाड़ डालता है
1: स्टोरी फॉलोज अ क्वर्की मिक्स ऑफ गैंगस्टर्स क्रिमिनल्स एंड एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स हुज लाइव्स कोलाइड इन अ जंगल नियर द बॉर्डर
21: हम लोग असली आर्मी वाले नहीं है
22: हमें जाने दो मालिक हम सब भांड है रोजी रोटी के लिए काम करते हैं
23: तेरी शक्ल कहीं देखी हुई है
14: आप फ्लॉप फिल्म में भी देखते हो
1: However, what begins as an operation resembling a film shoot soon snowballs into a series of chaotic adventure filled with comedy, action and confusion. The ensemble cast features Akshay Kumar, alongside Sunil Shetty, Disha Patni, Jacqueline Fernandez, Arshad Varsi, Jackie Shroff, Paresh Rawal, Raveena Tandon, Lara Datta, among others in pivotal roles. Entertainment Bureau, India Today.
24: Trailer khatam.
25: Ash absolutely owns the screen in Toxic, a fairy tale for grown-ups, bringing unmatched intensity and control. Backed by a powerhouse ensemble, this trippy, high-octane thriller masterfully blends action, suspense, and style, cementing Yash's cinematic dominance. Take a look.
26: It's over. When I say it's over.
27: It's dark, it's trippy, and badass to say the least. Yash makes a striking entrance as Raya in Toxic, a fairy tale for grown-ups. Commanding every frame with confidence, intensity, and authority. From his very first appearance, Raya sets the tone for a high-octane, gripping drama, moving not as a character seeking validation, but as one in complete control.
0: Daddy's home.
27: Set against visually striking backdrops that seamlessly blend suspense and action, the film delivers a cinematic experience that keeps audiences on edge. The ensemble cast adds depth and nuance to the story, featuring Kiara Advani as Nadia, Huma Qureshi as Elizabeth,
2: fighting for her scraps of devotion,
27: Nayantara as Ganga, Tara Sutaria as Rebecca, and Rukmini Vasan as Melissa.
3: Ladies and ladies, vabavre bartira, vattig bartira.
27: Each bringing their own flair to the film's high-stakes narrative. Directed and co-written by Geetu Mohandas alongside Yash, Toxic was simultaneously shot in Kannada and English. With dubbed versions in Hindi, Telugu, Tamil, Malayalam and several other languages, reflecting its global ambition.

एक न्यूज आई कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अयोध्या में जो घपला चल रहा था, तीन चार महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनुशंसा की कि जो काउंटिंग स्टाफ है उसको हटाया जाए, लेकिन उस सलाह को, उस अनुशंसा को नजरअंदाज किया गया, जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। कुछ ऐसी ताकतें हैं, वो दिल्ली में है या नागपुर में, ये बहुत जल्दी पता चलेगा, जो चोर को वहां बचा रही थी और शायद आगे भी बचा रही है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, जैसा मैंने आपको कहा, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युद्ध खत्म भी हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तेल का कम भी हो जाए, जो पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर का दाम बढ़ चुका है, सरकार उसको वापस नहीं लेगी। हम बार बार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि मिडिल क्लास पर, मध्यम वर्ग पर, निम्न वर्ग पर, सब पर जो बर्डन है, जो वजन है, जो बोझ डाला जा रहा है, आपकी गलत नीतियों का बोझ है, उसको आप वापस लीजिए।

0: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena.
1: La Que Buena.
0: ESPN Radio.
2: We know LeBron has to be the best player on the planet to
0: get The Daily.
3: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
0: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
4: का ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया, ना ही मैंने किसी कॉलेज में अप्लाई किया, अप्लाई भी नहीं किया, एडमिशन तो दूर, मैंने अप्लाई भी नहीं करा था किसी कॉलेज में. एंड फिर मैंने खुद से ही इसी कमरे में बैठ के अपनी पूरी सेल्फ स्टडी वगैरह करी, एंड यहीं पे मैं रहा हूँ. अपने जो प्रीवियस नोट्स थे 11th 12th के, वो मैंने वापस से रिवाइज करे, मैंने फ्रॉम स्क्रैच वापस से अपनी प्रिपरेशन शुरू करी.
5: His perseverance paid off. In 2022, Sanket cracked both JEE Main and JEE Advanced and secured admission to the Indian Institute of Space Science and Technology, where he pursued aerospace engineering.
4: मेरे को IIST में admission मिला, तो वहाँ पे जाके मुझे aircraft से spacecraft तक का जो innovation है, उस चीज के मैं introduce हुआ. And वहाँ पे जाके मैंने बहुत ज़्यादा like space conservative भी पढ़ाई करी, तो उसने मेरे अंदर का innovation करा कि हाँ, not aircrafts, not something, but something related to space, something related to rockets. तो वहाँ से फिर मैं अपनी प्रिपरेशन मैंने वहां पे शुरू करी.
5: क्वालिफाइंग डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन हिज एकेडमिक परफॉर्मेंस, संकेत इम्प्रेस्ड द इसरो पैनल विद हिज टेक्निकल नॉलेज एंड हैज नाउ बीन सिलेक्टेड एज अ साइंटिस्ट इंजीनियर. ही विल बी पोस्टेड टू इसरोस प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स इन महेंद्रगिरी, वेयर रॉकेट सिस्टम्स अंडरगो क्रिटिकल टेस्टिंग बिफोर लॉन्च. हिज फैमिली सेज हिज जर्नी इज प्रूफ दैट वन सेटबैक डज नॉट डिफाइन सक्सेस. From missing JEE Advanced by just 2 marks to earning a place at ISRO, Sanket Kumar's story is a reminder that perseverance can sometimes achieve what talent alone cannot. Bureau Report, India Today.

0: Uday, good afternoon once again, and thank you for staying tuned to India Today. I'm Suvesha Sawant. More breaking news coming in. It's a big remark that has been made by accused Sia's family. Sia's family has claimed that they did not know anything about Chetan, saying that they would have stopped Sia had they known about Chetan. In fact, Sia's father has said that we would have called off the marriage with Ketan had we known about Chetan. He's also said that Sia and Ketan's match was approved by the astrologer. He had said that Sia and Ketan are the perfect match. Sia's father has also said that Ketan's family had agreed only after the horoscope was matched that they decided to go ahead with Sia and Ketan's wedding. But the family that has claimed that they did not know anything about Chetan, there was absolutely no pressure from their side on Sia to go ahead with Ketan. Sia had said that she was happy with the idea of marrying Ketan. She was in agreement, and that is why they went on to finalize that matrimonial with him. They have also gone on to say that had they known about Chetan, had they known that Chetan was a part of Sia's life and Sia was serious about Chetan, then they would have called off the marriage with Ketan. Remember, a lot of questions that have come to light about why Sia could not simply tell her parents that she did not want to marry Ketan, that she and Chetan chose to kill him instead of just an admission in front of her parents. But now Sia's parents, as they continue to have their statement recorded by the cops, have said that they did not know anything about Chetan and they would not have pushed Sia to marry Ketan had Sia given them the slightest of hint or inkling that she was not interested in marrying Ketan. In fact, they've even gone on to say, and this is the statement that is coming from Sia's father, who said that had they had an idea about Chetan, they would have called off the marriage with Ketan. He's even said that the astrologer had approved of Sia and Ketan's match. Only when the Kundalis were matched that Ketan's family had given a go-ahead, and that's how everyone seemed in agreement with this relationship that they decided that Sia would get married to Ketan. Let me take this to my colleague Omkar Wable, who's with us on the phone line. Omkar, the latest statement coming in from Sia's father, who said that there was no pressure from their end. They did not know about Chetan, and had Sia told them that she was not interested in marrying Ketan, they would not have pushed her.
1: Well, exactly. Praveen Goyal, father of Sia, just interacted with India Today, and he is clear that he was not aware of the relationship. Even previously, when he interacted with us, even Pooja Goyal, mother of Sia, they still understand that she didn't tell anything at all. So they just knew that Chetan Chaudhary is good friend of Sia. That's it. Even Sahil Goyal is admitting they knew Chetan Chaudhary, but they had no idea what was going between Sia and Chetan. But later on, when they got to know something is not going properly, then they tried to speak with Agarwal. But till then, engagement was done by both the families. And after that, even now, Praveen Goyal is claiming that he was not aware what was happening between them. So now it is quite clear. But the important thing is Praveen Goyal against Sahil and Pooja Goyal. They have recorded their statement to the police, and investigation is underway. Back to you.
0: Omkar, stay on. Let's also play out that interview with Sia's father, where he said that they had no idea about Chetan.
2: 3 जुलाई तक सिया गोयल को कस्टडी में भेजा गया है. चेतन चौधरी भी उसके साथ रहेगा और 3 तारीख के बाद अगली सुनवाई होगी. लेकिन उससे पहले अहम बात यह है कि पूजा गोयल और प्रवीण गोयल, इन दोनों को पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया था. उनका लड़का साहिल भी वहां था मेरे साथ. प्रवीण गोयल है भी जो उनके पिता है. मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि ये एग्जैक्टली लॉयर का आपका इशू क्या हुआ है?
3: सर, ये आशुतोष श्रीवास्तव जी, ये बहुत बड़ा नाम है और मैंने कभी उनको हायर नहीं किया है और इस केस का तो मुझे कुछ भी पता नहीं है कि उनका कैसे क्या है क्या नहीं है. और हमने तो हायर नहीं किया है, ना मेरी कभी बात हुई है उनसे और ना कभी मैंने देखा है. और हमने तो जो कुछ किया है वो विपुल जी सर को किया है और पूरे केस की तहकीकात वही देखेंगे और वही करेंगे.
2: लेकिन श्रीवास्तव का बार बार कहना था उनके पास वकालतनामा है, वो कोर्ट में भी अपीयर हुए, फिर एग्जैक्टली क्या हुआ?
3: नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। श्रीवास्तव सर के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरी बेटी ने उनको सिग्नेचर दिए, उनको भी कुछ पता नहीं होगा, उन्होंने तो बस वो कुछ देखा नहीं है और एक वकालत के नामे थे, वो हिसाब से सही कर दी होगी, बाकी हमने उनको कभी हायर नहीं किया।
2: आपको पुणे के लिए लोनावला पुलिस ने बुलाया था, आपकी पत्नी पूजा गोयल भी वहाँ साथ में थी, तो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई है, किस तरीके की प्रोसेस आपके साथ हुई है?
3: सर, हम सुबह 11:30 बजे पहुँच गए थे, हमें रात को 11:30 बजे छोड़ा, कम से कम यानी कि 11:30-12 घंटे पूरी तहकीकात की पुलिस ने हमारे साथ। उन्होंने जो जो क्वेरीज पूछी, हमने जो जो हमें पता था वो हमने सब क्वेरीज दी है उनको, और पूरा स्टेटमेंट भी दिया है मैंने भी और मेरी मिसेस पूजा गोयल ने भी, और वो अच्छे से तहकीकात कर रहे हैं। मैं तो बस यही बोलूँगा कि उनको जल्द से जल्द इस बारे में अपराधी का पता चले और उन्हें सख्त से सजा दी जाए।
2: देखो, आपको ये भी पूछा गया होगा एग्जैक्टली कि क्या आपको इस पूरे मामले में मालूम था नहीं था?
3: हाँ, पूछा मैंने, पर मुझे इस मामले की कोई भी जानकारी नहीं है। अगर कुछ मुझे पता चलता तो मैं कुछ ना कुछ एक्शन लेता था और कुछ ना कुछ सामने वाले से बात करके, भाई ये रिश्ता थोड़ा यानी कि पोस्टपोन करते हैं, ऐसे ऐसे कोई बात आई है मेरे सामने तो मैं ज़रूर बात करता था, पर मेरे सामने बिल्कुल भी 1% भी यानी कि कोई बात लीक नहीं हुई जिससे मैं ये मन में भी लेके आता था।
2: तो पिछली बार जब हम इंटरव्यू किए थे तब सिया की माँ का कहना था कि चेतन एक बार कुछ क्रिकेट मैच के दौरान वगैरह मिला था, पहचान
3: थे। ये अभी तो बात सब बाइट हो गई है और मैं अभी इस मानसिक अवस्था में नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा बाइट दे सकता हूँ और मैं बहुत रेस्ट हूँ। कल भी लोगों ने, मीडिया वालों ने मुझे बहुत तकलीफ दी जिसकी वजह से मुझे शॉप बंद करके आना पड़ा, तो मैं नहीं ज़्यादा बाइट दे सकता हूँ, प्लीज।
2: ठीक है, मुझे बस ये बताइए कि अब ये बातें सामने आ रही है कि दोनों की शादी से मतलब एंगेजमेंट से पहले कुंडली जुड़ाई गई थी।
3: हाँ, वो सामने वालों ने सिया का बायोडाटा और जन्म कुंडली मांगी थी तो मैंने दे दी थी, तो उनका ही सामने से फोन आया था कि ऐसे ऐसे 27-28 गुण कुछ मिल रहे हैं पर हमारी तरफ से हाँ है। मैंने बोला था ठीक है भाई साहब, आप खुद ही कुंडली मिला लीजिए और देख लीजिए, तो उन्होंने बताया था कुछ 27-28 गुण मिल रहे, तो उनकी हाँ हो गई थी।
2: एक आखिरी सवाल इस मामले में, क्या फैमिलीज में इस तरीके की चर्चाएं हुई थी कि शुरू में सिया और केतन अग्रवाल का होने के बाद आपका लड़का है साहिल और फिर केतन की बहन, इनके बीच कुछ होगा और इसी
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं सर, हमारे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है और ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी बेटी जिस घर में जाती है उस घर के यानी कि हमारी कजन में भी यानी कि ऐसा कोई रिश्ता वगैरह नहीं होता है और उसका कोई वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है प्लीज। और इस बारे में आप कुछ मुझे पूछो भी मत और कुछ भी नहीं है ऐसा हमारा कुछ नहीं।
2: एक आखिरी सवाल सर, कि अगर इस पूरे मामले में आपकी लड़की दोषी साबित होती है तो?
3: दोषी साबित होती है, मैंने पहले भी बाइट में यही बोला था, जो केतन जी के साथ हुआ है इमीजिएटली तहकीकात करके और इमीजिएटली जो केतन जी के साथ हुआ वही सजा सिया को मिलनी चाहिए, यही मेरी प्रार्थना है बस।
2: ओके, सिया गोयल के पिता हमारे साथ थे, प्रवीण गोयल, उनका यही कहना है कि अगर इस पूरे मामले में उनकी लड़की दोषी ठहराई जाती है, उसे दोषी करार दिया जाता है, तो उसे भी उसी लोहगढ़ के उसी क्लिफ से उस जो घाटी है उसमें ढकला जाए, उसी तरीके की शिक्षा उसे होनी चाहिए।
0: And we'll now go across to Sakshi Batra of Business Today, who joins us with all the latest updates from the markets. Over to you, Sakshi.
4: Look, this investment guru's tips will double your money. Just claim the offer.
5: Double your money from any random group. Pay attention. Promising double returns, they'll lure you in tight. Unverified groups will send fake tips overnight, emptying your pockets before you can fight. SEBI and NSE advise, consult only SEBI registered advisors and make payments only to verified accounts or UPI IDs. An investor awareness initiative by SEBI and NSE.
6: Presented by National Stock Exchange. ICFA University, building tomorrow's leaders today.

एक न्यूज आई कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अयोध्या में जो घपला चल रहा था, तीन चार महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनुशंसा की कि जो काउंटिंग स्टाफ है उसको हटाया जाए, लेकिन उस सलाह को, उस अनुशंसा को नजरअंदाज किया गया, जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। कुछ ऐसी ताकतें हैं, वो दिल्ली में है या नागपुर में, ये बहुत जल्दी पता चलेगा, जो चोर को वहां बचा रही थी और शायद आगे भी बचा रही है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, जैसा मैंने आपको कहा, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युद्ध खत्म भी हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तेल का कम भी हो जाए, जो पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर का दाम बढ़ चुका है, सरकार उसको वापस नहीं लेगी। हम बार बार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि मिडिल क्लास पर, मध्यम वर्ग पर, निम्न वर्ग पर, सब पर जो बर्डन है, जो वजन है, जो बोझ डाला जा रहा है, आपकी गलत नीतियों का बोझ है, उसको आप वापस लीजिए।

0: Missing JEE Advanced by just 2 marks would have shattered the dreams of many. But for Meerut's Sanket Kumar, it became the motivation to work even harder.
1: उस चैलेंज को दिमाग में रखते हुए मैंने फिर एक साल का ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया. ना ही मैंने किसी कॉलेज में अप्लाई किया, अप्लाई भी नहीं किया, एडमिशन तो दूर, मैंने अप्लाई भी नहीं करा था किसी कॉलेज में. एंड फिर मैंने खुद से ही इसी कमरे में बैठ के अपनी पूरी सेल्फ स्टडी वगैरह करी. एंड यहीं पर मैं रहा हूँ. अपने जो प्रीवियस नोट्स थे 11th 12th के, वो मैंने वापस से रिवाइज करे. मैंने फ्रॉम स्क्रैच वापस से अपनी प्रिपरेशन शुरू करी.
0: His perseverance paid off. In 2022, Sanket cracked both JEE Main and JEE Advanced and secured admission to the Indian Institute of Space Science and Technology, where he pursued aerospace engineering.
1: मेरे को IIST में एडमिशन मिला, तो वहाँ पे जाके मुझे एयरक्राफ्ट से स्पेसक्राफ्ट तक का जो इनोवेशन है उस चीज़ के मैं इंट्रोड्यूस हुआ. एंड वहाँ पे जाके मैंने बहुत ज़्यादा लाइक स्पेस कंजर्वेटिव भी पढ़ाई करी, तो उसने मेरे अंदर का इनोवेशन करा कि हाँ, नॉट एयरक्राफ्ट, नॉट समथिंग, बट समथिंग रिलेटेड टू स्पेस, समथिंग रिलेटेड टू रॉकेट्स. तो वहाँ से फिर मैं अपनी प्रिपरेशन मैंने वहाँ पे शुरू करी.
0: Qualifying directly for the interview based on his academic performance, Sanket impressed the ISRO panel with his technical knowledge and has now been selected as a scientist engineer. He will be posted to ISRO's propulsion complex in Mahendragiri, where rocket systems undergo critical testing before launch. His family says his journey is proof that one setback does not define success. From missing JEE Advanced by just 2 marks to earning a place at ISRO, Sanket Kumar's story is a reminder that perseverance can sometimes achieve what talent alone cannot. Bureau Report, India Today.

0: Yesterday on the program, we brought you a story from Jaipur. Rajasthan's biggest government hospital and one of their key departments was in a lockdown. Remember this story we showed you? A doctor retired. He did not unlock his cabin. All the files were stuck inside. So all these patients who needed a kidney transplant, despite completing all their paperwork, could not get one. Why? Because the files are shut. As an impact of India Today's coverage, repeated coverage, that door has now been opened, we are told. We are told, as we expose that apathy at Jaipur Sawai Man Singh Hospital, where 11 kidney transplant cases had been stalled, that door has now been opened. How quickly will they make it work? How many lives will we actually manage to save is the question we are still asking. We haven't let our, you know, sort of focus on the story go off. Let me go across to my colleague Sharad Kumar joining us with the very latest on this. Sharad, kal aapne dikhaya darwaza band hai, aaj kya darwaza khul gaya hai, file kya bahar aa gayi hai, kitni jaldi process shuru hoga?
1: सुनल, देखिए सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। जिस तरह से ये खबर इंडिया टुडे ने दिखाया, उसके बाद न केवल दरवाजा खुल गया है बल्कि सभी पेशेंट के किडनी ट्रांसप्लांट के काम शुरू हो गए हैं। जो तीन उसमें से ज्यादा गंभीर थे उन्हें एडमिट भी कर लिया गया है और 3-4 दिनों के अंदर ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। आप समझिए कि सरकार अगर चाहे तो इस तरह से पेंडेंसी नहीं रह सकती है, मगर वहां पर इंटरनल झगड़े हो या फिर कमरा लॉक करके एक्सटेंशन चाह रहे हो कि एक्सटेंशन में मुझे सरकार दे दे तो हम इसी कमरे में बैठे हैं, इसकी चाबी कहीं हम नहीं दें, या फिर जो वहां पर ट्रीटिंग डॉक्टर है जूनियर वो किसी निजी अस्पताल में काम करने की वजह से वो फाइल नहीं खोज पा रहे हैं, वो ये सारी वजहें थी और इस सारी वजहों के की वजह से वहां पर जान को चली आई थी। एक कमरा बंद होने से 11 मरीजों की जान पर बनाई थी। अब जाकर सभी के सभी जो मरीज थे उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है और जो गंभीर थे उनके किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उन्हें एडमिट कर लिया गया है। यूरोलॉजी विभाग ने काम शुरू भी कर दिया है किडनी ट्रांसप्लांट का। तो आप समझिए कि किस तरह से वहां पर सरकार नहीं देखती है, लापरवाही बरतती है, तो हालात खराब हो जाते हैं। जो 6-6 महीना से मरीज पड़े हुए थे, ये खबर दिखाए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर सबका इलाज शुरू हो गया। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये लापरवाही रही है, चाहे प्रशासन की लापरवाही रहे हो, सरकार की लापरवाही रही हो या अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही रही हो। अच्छी बात ये रही कि इंटरनल मीटिंग हुई, सरकार ने जवाब मांगा और ये तय किया गया है कि ड्यूटी आवर में कोई भी सीनियर डॉक्टर अस्पताल के बाहर नहीं जाएंगे बिना बताए हुए, यानी कि निजी प्रैक्टिस के जो आरोप लग रहे थे उसे रोकने के लिए भी इंटरनल आदेश जारी किए गए हैं कि 2-3 घंटे के लिए जो डॉक्टर आते थे और चले जाते थे वहां पर भी आदेश जारी किया गया है कि अब नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई भी सीनियर डॉक्टर अपनी ड्यूटी पूरे किए बिना नहीं जाएगा। ये अच्छी खबर है।
0: शरद, अच्छी खबर है और आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। आपने ये खबर दिखाई, लोगों की जानें बची, पर कितनी शर्मनाक बात है कि जब तक कैमरा ना लगाओ एक दरवाजा भी नहीं खुलता इस देश में। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है। एक दरवाजा खुलाने के लिए हमें रिपोर्ट दिखानी पड़ती है, बहुत सारी और चीजें जिस पर डिबेट कर सकते हैं, जिस पर बात कर सकते हैं, लेकिन दरवाजे हम खुलवा रहे हैं सरकार को सिर्फ उनका चेहरा दिखाने के लिए, असलियत दिखाने के लिए। पर फिलहाल के लिए अगर यही चल रहा है तो हम दिखाते रहेंगे। एज लॉन्ग एज इट इज हेल्पिंग द पीपल ऑफ इंडिया, वी विल कंटिन्यू टू ब्रिंग यू दीज स्टोरीज। ऑन दैट नोट, वी गोना स्लिप इनटू अ वेरी क्विक ब्रेक। कमिंग अप ऑन द अदर साइड, आवर हेल्थ सेगमेंट।

0: अगर ये पांच चीजें हैं तो माइक्रोप्लास्टिक या जो प्लास्टिक आप यूज कर रहे हैं वो डेंजरस है. माइक्रोप्लास्टिक मीटर.
1: सो देयर इज दिस चेकलिस्ट. फर्स्ट इज हीट, प्लास्टिक एंड फूड शुड नॉट मिक्स एज मच एज पॉसिबल. दूसरा, एसिडिक फूड को प्लास्टिक में नहीं रखना है, ऑयली फूड को प्लास्टिक में नहीं रखना है, और लॉन्ग टर्म किसी चीज को प्लास्टिक में नहीं रखना है. तो ये तीनों का एक बहुत बढ़िया सिंबल है जो प्लास्टिक के अचार आते हैं, विच आर एसिडिक, ऑयली एंड केप्ट फॉर लॉन्ग टर्म. एंड लास्टली, बहुत ज्यादा अगर हम उसको एजिटेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फूड को या लिक्विड्स को हम हिला रहे हैं या प्लास्टिक को ही कट कर रहे हैं, दैट इज डेंजरस.
0: दैट्स अ गुड वन. ये बेसिकली आपका चेकलिस्ट होना चाहिए इंस्टेड ऑफ गेटिंग पैरानॉइड अबाउट प्लास्टिक.
1: एक लिस्ट बना के रखना और उसको मेमोराइज करने से अच्छा है ये पांच चीजें याद रखिए, देन यू विल यूज द प्लास्टिक मोर और लेस सेफ.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.

0: कितने आदमी लाए हो?
1: सरदार, सरदार टीएमसी के 20 सांसद और 58 विधायक।
2: शाबाश।
0: और तुम?
1: सरदार, उद्धव के 9 में से पूरे 6 सांसद।
0: अरे आओ चंडा, तुम कितना आदमी लाए थे रे?
1: सरदार, हम आम आदमी पार्टी के 10 में से पूरे 7 सांसद लेकर आए थे। हाँ,
0: यहाँ से 50-50 कोस दूर जब कहीं चुनाव होता है तो विपक्ष बोलता है अपने आदमी छुपा लो वरना। ये 20, ये 6 और ये 7, समाजवादी के पास 37 सांसद है, पूरे 37, 37, 37, 37। आप कितना लाएंगे महाराज?
3: Co-powered by Suzlon, good energies that work. ICFA University, building tomorrow's leaders today.

0: see this reshuffle, Rajat?
1: So as I've told this earlier as well, Maria, on your show, that this is a complex sort of a balancing act that the Prime Minister has to do, and this is why it takes time. You have to ensure the upcoming state elections, both Punjab and Uttar Pradesh. Within Uttar Pradesh, you are seeing some rumblings of ambitions among various smaller communities, especially the BC, the OBC communities, them not getting adequate representation in UP itself, and even in the Modi government would be a talk of the town when the elections are, the election season heats up. So Prime Minister, of course, has that sense in mind. I don't foresee that overall, given his current cabinet and looking at the broader set of state governments around the country, there is any lesser representation of OBC, Prime Minister himself being an OBC.
0: Yes.
1: Again, the real challenge here is when you talked about women, are the bench strength strong enough to be able to give that choice before the Prime Minister to pick and choose whom he can put in charge of ministers. Similarly, for various communities, even for the Sikh community, if suppose we believe that Hardeep Puri sir is going to resign or retire, he needs fresh blood to be inducted. You also need to do a balancing act that the younger lot is also fielded in the elections, in the upcoming elections. So a lot of messaging, a lot of complex balancing act that Prime Minister has to do. And we just heard the news that Nirmala ji is off to France for a 4-day visit. So clearly for the next 4 days, there's no reshuffle. Once she's back after 4 or 5 days, we'll be potentially, look, that's the easiest signal that we can give to your viewers. So we can again hold our nerves for the next four or five days.
0: And that could also mean that there are no changes in the Raisina Hill portfolios and the changes or any new induction is happening otherwise.
1: Well, I think if there is a swearing-in, having such a senior leader not being present doesn't make sense. So I believe whenever that event has to happen, you will see every single outgoing and the incoming minister to be there in Delhi on Raisina Hill itself.
0: Okay.
1: So
0: okay.
1: For four
0: okay.
1: days, we can all rest. We will see what happens after that.
0: Okay, so perhaps fifth is when we are looking at. We have been discussing multiple windows. Let me bring back Himanshu. Himanshu. And Piyush, Himanshu, ये जो रजत बता रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर का शेड्यूल, तो उससे तो फिर यही हो गया कि जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 3 तारीख को नितिन नबीन हैं दिल्ली में और उन्होंने जो उनको यूपी जाना था उन्होंने अपना विजिट पोस्टपोन किया है, तो इससे कोई एक स्पेक्यूलेशन शुरू हो गया था. पोलिटिकल सर्कल्स में बहुत सारे स्पेक्यूलेशन हो रहे हैं और हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर जो खबरें आ रही हैं वो इन्फॉर्म्ड गैसेज हैं, क्योंकि बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि उनका जो नया कैबिनेट होगा, नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी.
2: देखिए, इसमें मारिया कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री जो सोचते हैं वो कब इम्प्लीमेंट करेंगे. और उनके बारे में एक चीज और कहा जाता है, वो किसी भी चीज को लेकर उनको कब करना है वो तारीख नोट करके रख लेते हैं.
0: हाँ.
2: उसका क्या ड्राफ्ट होगा, किस तरीके का स्वरूप होगा, वो कैबिनेट रीशफल हो या अन्य कोई ऐसी चीज हो, जो बड़ा फैसला वो लेते हैं, वो सारी चीजें प्री प्लान माइंडसेट में तैयार करके रखते हैं. उनको मालूम है कब किस जगह पे क्या कदम उनको उठाना है और क्या फैसला उनको करना है. फैसले वो पहले ले लेते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा ये अंतिम समय तक किसी को नहीं पता होता है. एक घटना मैं आपको बताता हूं, मारिया आप भी वहां पर थी, एक बड़े मिनिस्टर के घर पर एक डिनर था जहां प्रधानमंत्री आए थे, जर्नलिस्टों से मिले थे 2015 में जून में. तब कुछ जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था कि ये कैबिनेट रिशफल कब होगा, तो उन्होंने इशारों में कहा था जो मंत्री जिनके घर पर डिनर था कि अगर मैं इस बार कैबिनेट रिशफल करूंगा, अगर इस हाथ से करूंगा तो इस हाथ को नहीं मालूम पड़ेगा. तो उन्होंने ये भी बता दिया था कि जो मेरे साथ मंत्री बैठे हैं उनको भी नहीं मालूम पड़ने वाला है, जो मेरे सबसे क्लोजेस्ट लोगों में है. कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज की सीक्रेसी को बड़ा मेंटेन कर चलते हैं. हाँ, कैबिनेट में कौन आ सकते हैं, नहीं आएंगे, ये भी एक बड़ा मैटर करता है. लेकिन उनका एक स्टेटमेंट रहता है ज्ञान को लेकर, वो कहते हैं अगर मेरी सरकार काम करती है तो ज्ञान पर काम करती है. ज्ञान को जो उन्होंने परिभाषा दी है उसमें जो है आप देखिए, गरीब है, युवा है, एग्रीकल्चर है और नारी है. इन चारों पैरामीटर्स को जो है जोड़कर कैबिनेट रिशफल को आप देख सकते हैं.
0: ओके ओके, दैट्स एक्चुअली अ वैलिड पॉइंट देयर. द सीक्रेसी

0: Jazz fans, rejoice. Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
1: अयोध्या में जो घपला चल रहा था, तीन चार महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनुशंसा की कि जो काउंटिंग स्टाफ है उसको हटाया जाए, लेकिन उस सलाह को, उस अनुशंसा को नजरअंदाज किया गया, जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। कुछ ऐसी ताकतें हैं, वो दिल्ली में हैं या नागपुर में, ये बहुत जल्दी पता चलेगा, जो चोर को वहां बचा रही थी और शायद आगे भी बचा रही है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, जैसा मैंने आपको कहा, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युद्ध खत्म भी हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तेल का कम भी हो जाए, जो पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर का दाम बढ़ चुका है, सरकार उसको वापस नहीं लेगी। हम बार बार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि मिडिल क्लास पर, मध्यम वर्ग पर, निम्न वर्ग पर, सब पर जो बर्डन है, जो वजन है, जो बोझ डाला जा रहा है, आपकी गलत नीतियों का बोझ है, उसको आप वापस लीजिए।

भारतीय सेना, जैसे कि आप सब वाकिफ हैं, एक कॉम्बैट रेडी और बैटल हार्डन्ड फोर्स है और युद्ध क्षेत्र की हर चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तैयार और सक्षम है। इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से सशक्त हो और मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।

0: the Dangal.
1: After a thunderous opening weekend, the Akshay Kumar starrer has officially stormed past the 100 crore mark at the worldwide box office. Directed by Ahmed Khan, the film has collected 8.50 crore net on its first Monday, taking its worldwide gross collection past the 100 crore milestone. The film also continued to perform well in international markets.
2: हमारे फिल्म आर्मी वाली और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है
3: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या
1: Interestingly, its total overseas gross has climbed up to 19.95 crore, pushing the film's worldwide gross collection to an impressive 106.48 crore in just 4 days.
4: अपने घर
5: इसको टच रोल दे दिया कि तो हमें खा जाएगी
6: अरे वो पुरानी चावल है
7: मैं किस लिए फिल्म में
6: ग्लैमर
8: क्लाइमेक्स शूट कर ले क्या
9: तो कैसे करेंगे विलन चाहिए गुंडे चाहिए कहाँ से लाएंगे
10: इनको असलियत बतानी पड़ेगी
1: The box office journey began with 3.75 crore net from paid previews, followed by a solid 15.25 crore on its opening day. The momentum only gathered pace thereafter. Collections jumped to 20 crore on Saturday, while Sunday emerged as the film's biggest day, raking in an impressive 24.75 crore net.
11: बोला था तुम मेरे को वो देगा
12: क्या
11: अरे वो जो पिक्चर में हीरो को देता है
12: हीरोइन
13: अरे कैसी बात कर रहे हो ना ये पूरी फैमिली फिल्म है
11: नहीं रे ऐसा बोला ही नहीं मैं
14: वो क्या होता है जो कुएं के पास होता है ना
15: प्यासा
14: अरे प्यासा तो इधर है यार कुएं के ऊपर ऐसा रहता है ना झुक के
15: घोड़ा
14: वे घोड़ा नहीं बे गधे मैं बाल्टी मार के दूंगा तुम लोगों को
15: अरे यार जो तेरे हाथ में है वो यार
16: अन्ना बाल्टी अरे बाल्टी थी
14: कब से बाल्टी बोल रहा हूँ कोई समझ ही नहीं रहा
1: डायरेक्टेड बाय अहमद खान वेलकम टू द जंगल इज द थर्ड इंस्टॉलमेंट इन द पॉपुलर वेलकम फ्रेंचाइज
17: लोगों की माँ बहन होती है आपकी बाप बहन हो गई है अब अच्छे खानदान का शरीफ लड़का कहाँ से मिलेगा
18: अपन पे जो हाथ डालता है अपन उसकी फाड़ डालता है
1: स्टोरी फॉलोज अ क्वर्की मिक्स ऑफ गैंगस्टर्स क्रिमिनल्स एंड एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स हुज लाइव्स कोलाइड इन अ जंगल नियर द बॉर्डर
10: कि हम लोग असली आर्मी वाले नहीं है
19: हमें जाने दो मालिक हम सब भांड है रोजी रोटी के लिए काम करते हैं
6: तेरी शक्ल कहीं देखी हुई है
14: आप फ्लॉप फिल्म में भी देखते हो
1: However, what begins as an operation resembling a film shoot soon snowballs into a series of chaotic adventure filled with comedy, action and confusion. The ensemble cast features Akshay Kumar alongside Sunil Shetty, Disha Patni, Jacqueline Fernandez, Arshad Barsi, Jackie Shroff, Paresh Rawal, Raveena Tandon, Lara Dutta, among others in pivotal roles. Entertainment Bureau, India Today.
20: Trailer khatam.
21: Ash absolutely owns the screen in Toxic, a fairy tale for grown-ups. Bringing unmatched intensity and control. Backed by a powerhouse ensemble, this trippy, high-octane thriller masterfully blends action, suspense, and style, cementing Yash's cinematic dominance. Take a look.
22: It's over. When I say it's over.
23: It's dark, it's trippy, and badass to say the least. Yash makes a striking entrance as Raya in Toxic, a fairy tale for grown-ups. Commanding every frame with confidence, intensity, and authority. From his very first appearance, Raya sets the tone for a high-octane, gripping drama, moving not as a character seeking validation, but as one in complete control.
0: Daddy's home.
23: Set against visually striking backdrops that seamlessly blend suspense and action, the film delivers a cinematic experience that keeps audiences on edge. The ensemble cast adds depth and nuance to the story, featuring Kiara Advani as Nadia, Huma Qureshi as Elizabeth,
2: fighting for her scraps of devotion,
23: Nayantara as Ganga, Tara Sutaria as Rebecca, and Rukmini Vasant as Melissa.
7: Ladies and ladies, vabavre bartira, vattag bartira.
23: Each bringing their own flair to the film's high-stakes narrative. Directed and co-written by Geetu Mohandas alongside Yash, Toxic was simultaneously shot in Kannada and English. With dubbed versions in Hindi, Telugu, Tamil, Malayalam and several other languages, reflecting its global ambition.

0: कितने आदमी लाए हो?
1: सरदार, सरदार टीएमसी के 20 सांसद और 58 विधायक।
0: शाबाश। और तुम?
1: सरदार, उद्धव के 9 में से पूरे 6 सांसद।
0: अरे आओ चंडा, तुम कितना आदमी लाए थे रे?
1: सरदार, हम आम आदमी पार्टी के 10 में से पूरे 7 सांसद लेकर आए थे। हाँ,
0: यहाँ से 50-50 कोस दूर जब कहीं चुनाव होता है तो विपक्ष बोलता है अपने आदमी छुपा लो वरना। ये 20, ये 6 और ये 7, समाजवादी के पास 37 सांसद है, पूरे 37। 37। आप कितना लाएंगे महाराज?

0: कितने आदमी लाए हो?
1: सरदार, सरदार टीएमसी के 20 सांसद और 58 विधायक।
0: शाबाश। और तुम?
1: सरदार, उद्धव के 9 में से पूरे 6 सांसद।
0: अरे आओ चंडा, तुम कितना आदमी लाए थे रे?
1: सरदार, हम आम आदमी पार्टी के 10 में से पूरे 7 सांसद लेकर आए थे। हाँ,
0: यहाँ से 50-50 कोस दूर जब कहीं चुनाव होता है तो विपक्ष बोलता है अपने आदमी छुपा लो वरना। ये 20, ये 6 और ये 7, समाजवादी के पास 37 सांसद है, पूरे 37। 37। आप कितना लाएंगे महाराज?

0: कितने आदमी लाए हो?
1: सरदार, सरदार टीएमसी के 20 सांसद और 58 विधायक।
0: शाबाश। और तुम?
1: सरदार, उद्धव के 9 में से पूरे 6 सांसद।
0: अरे आओ चंडा, तुम कितना आदमी लाए थे रे?
1: सरदार, हम आम आदमी पार्टी के 10 में से पूरे 7 सांसद लेकर आए थे। हाँ,
0: यहाँ से 50-50 कोस दूर जब कहीं चुनाव होता है तो विपक्ष बोलता है अपने आदमी छुपा दो वरना। ये 20, ये 6 और ये 7, समाजवादी के पास 37 सांसद है, पूरे 37। 37। आप कितना लाएंगे महाराज?